0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये न सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
5: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.

0: पहुंचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
1: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: It's 7:30 AM. This time check is brought to you by
1: Dettol Clean Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए.
3: This message was brought to you by FM 100 Pakistan.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
3: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
2: account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. जहाँ ख्वाब वहाँ HBL.
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट.

0: स्टार्ट आउट
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट.
4: ईट जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
6: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो.
7: नई स्कीम,
8: कमिटी,
6: लाड बनाए फरो.
8: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो.
9: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ. आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
10: शरायत जवाबित लागू है.
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
11: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500.
12: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात.
13: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
12: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक. अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना.
14: शराय तो जवाबित लागू हैं.

0: This program is brought to you by.
1: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और
3: एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
4: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
6: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
7: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
8: हमारी जिम्मेदारी है।
9: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: Us on facebook.com/fm247365
11: fm247365
0: fm100 31 saal fm100 aap

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: हायर नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो क्रॉस, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: This program is brought to you by.
1: अगर आप हैं ड्राइव कार पाई के रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
3: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड
4: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त
0: एंड
3: डेटॉल फिल्टर ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए
0: एंड
5: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम AGS ट्यूबलर बैटरी
0: एंड
6: HBL फ्री रमकम जहां ख्वाब वहां HBL
0: एंड
5: दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए
0: एंड
7: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM 247365.

0: It's 8:30 AM. This time check is brought to you by
1: Dettol Filter. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो. श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद.
5: जीते 20,000 रुपए. बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम दो बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका. जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके. शराइत ज़वाबित लागू है.
2: अस्करनत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
7: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो.
8: नई स्कीम,
9: कमिटी,
7: प्लाट बनाए फरो.
9: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो. इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ. आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक. शराइत ज़वाबित लागू है.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
10: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
11: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाएं फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से

0: This program is brought to you by.
1: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
2: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: And
3: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
0: And
4: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
0: And
5: डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
0: And
6: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम, AGS ट्यूबलर बैटरी।
0: And
7: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
0: And
6: दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
0: And
8: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
9: Like us on facebook.com/FM247365.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
2: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
1: account khole digitally. या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
5: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक अब करो सफर टेंशन फ्री क्योंकि जैस कैश है ना
6: शराय तो जवाबित लागू हैं

0: This program is brought to you by.
1: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
3: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
4: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
3: एंड डेटॉल फूल सोप, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
5: एंड ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम, AGS ट्यूबलर बैटरी।
6: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब

0: इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमे इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने आप ना कुछ तीन बार मौत देखा।
5: टाइम से मनु ऐसे के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365। FM 247365।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
12: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
12: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
12: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
1: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
5: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो।
6: नई स्कीम,
7: कमिटी,
8: प्लाट बनाए फरो।
9: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
10: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: शराइत ज़वाबित लागू है।
12: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
12: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
13: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
4: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
14: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
15: अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
16: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
5: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نہیں تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر کھانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
6: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
7: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.

पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शराय तो जवाबित लागू हैं।

0: on.
1: This program is brought to you by.
2: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
3: And Phoenix लगा और भूल जा. Phoenix लगा और भूल जा.
1: And
4: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
1: And
5: payment वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त.
1: And
6: डेटॉल फूल सोप, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
1: And
7: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम. AGS ट्यूबलर बैटरी.
1: And
8: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: And
7: दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
1: And
9: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स.
10: Like us on facebook.com/fm247365.
11: FM247365.
12: Let's celebrate
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by.
1: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
3: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड
4: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त
0: एंड
5: डेटॉल फिल्टर ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए
0: एंड
6: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम AGS ट्यूबलर बैटरी
0: एंड
7: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
0: एंड
6: दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए
0: एंड
8: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स
9: Like us on facebook.com/FM247365
10: FM 247 365 100 FM.
11: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye pegham, Hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: 7:30 AM. This time check is brought to you by
1: Dettol Cool Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: लाड बनाए फरो।
5: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
6: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: शरायत ज़वाबित लागू है।
8: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
9: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
10: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
11: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
12: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
13: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
14: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
15: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
16: शराय तो जवाबित लागू हैं।

0: This program is brought to you by.
1: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
2: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
3: And
4: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
5: And पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराहे रास्त।
3: And
6: डेटॉल फूल्स, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
3: And
7: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम, AGS ट्यूबलर बैटरी।
3: And
8: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: And
7: दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: And
9: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।
10: Like us on facebook.com/fm247365
11: FM 247365

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
2: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
2: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
4: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।

0: us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM247365

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: लाड बनाए फरो।
5: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
6: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: शराइत ज़वाबित लागू हैं।

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: लाड बनाए फरो।
5: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
6: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैशबैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: शराइत जवाबित लागू हैं।

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
3: प्लाट बनाए फरो।
2: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराइत जवाबित लागू हैं।

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोज करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: Like us on facebook.com/fm247365

0: 7365 FM 100.
1: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
0: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
2: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
1: एक दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
3: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंट्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन टीएनसीज को तस्लीम करना है।

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म नहीं तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
2: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
3: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
1: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
0: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाब लागू है।

0: Yellow. एक दो तीन Yellow.
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
4: This program is brought to you by
5: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 2:45 PM. This time check is brought to you by
1: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू हैं।
4: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: ईद उल अज़हा पर सफाई की रिवायत, महफूज हवाई सफर की जमानत, तवज्जो फरमाएं। एयरपोर्ट्स के अतराफ कुर्बानी की बाकियात खुले आसमान तले न छोड़ें। ये बाकियात एयरपोर्ट्स के गिर्द परिंदों की तादाद में इजाफे का बायस बनती है और जहाजों से परिंदे टकराने के वाकयात में इजाफा हो जाता है, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। एयरपोर्ट्स के गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें। आए, जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाएं, थोड़ी सी एहतियात से फजाई सफर को महफूज बनाएं। डायरेक्टर जनरल, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी।
7: FM 100। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।
2: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
3: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
4: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें। वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद्दे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 247 365 365

0: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
1: नई स्कीम,
2: कमिटी,
3: लाड बनाए फरो।
2: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
4: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास वहां HBL।
2: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।

0: नोज में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
5: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
6: नई स्कीम,
7: कमिटी,
8: लाड बनाए फरो।
7: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शरायत ज़वाबित लागू हैं।
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
1: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: सर, इतना भारी जानवर गिराया और गोश्त की कटाई भी आपकी मर्जी की।
3: तो ये लो कैश पेमेंट, तुम्हारी मर्जी की।
2: कैश नहीं चाहिए आपके हाथ से, पेमेंट सिर्फ रात से।
4: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
1: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
1: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
5: 100 FM।
1: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
6: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
7: शराय तो जवाबित लागू है।
1: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
8: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
9: ये क्या है भाई?
8: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
10: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
8: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
11: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: This program is brought to you by।
13: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
14: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
15: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
4: एंड पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
15: एंड डेटॉल फिल्टर, ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
1: एंड ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम, AGS ट्यूबलर बैटरी।
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
16: ख्वाब तो सब देखते हैं, बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
5: ہم نے اپنے آپ کو سے تین بار موت دیکھا.
17: ٹائم سی منوں ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا, میں نہیں بچا.
18: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی, سانو ماریا, سانو کٹیا.
16: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کرے.
19: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
16: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج. گرفتاریاں, جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچے, خواب ضرور دیکھیں, بہتر راستہ چنے. حکومت پاکستان.
11: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
20: FM 24/7/365

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू हैं।
2: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
2: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: हायर नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो क्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: पजामस में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
3: नई स्कीम,
4: कमिटी,
2: प्लाट बनाए फरो।
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो, इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शरायत ज़वाबित लागू है।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
5: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: ए दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2,500।
8: अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनामात।
9: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: तेज में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
2: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
2: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
4: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
5: ये क्या है भाई?
4: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
6: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
4: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
2: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

चल रही फ्रांसिस इज ऑल अबाउट धीरे धीरे बाय सोएब. थैंक यू सो सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन. सम अपडेट्स फॉर यू. एचपीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ पाएं मुफ्त आईडीएफपी एंड ऑफ कोर्स मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग, बेहतरीन मोबाइल ऐप. अकाउंट खुलवाएं डिजिटली या विजिट करें अपने करीबी एचपीएल ब्रांच एंड ओपन योर एचपीएल फ्रीडम अकाउंट नाउ.

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
2: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
3: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
4: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड
5: पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त
0: एंड
6: डेटॉल फिल्टर ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए
0: एंड
7: ईद की हर दावत में रहे दिल को आराम AGS ट्यूबलर बैटरी
0: एंड
8: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
9: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
8: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
10: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद
11: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
9: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
8: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
12: ए दुनी दो दो दुनी चार सही इंतखाब के इनामात 2500
2: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात
12: दुनी दो दो दुनी चार
13: इंट्रासिफ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
14: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए
15: Meet and Mithas by United King. इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें United King के तमाम आइटम्स पर और सिर्फ यही नहीं इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी जायके की रवानी हमारे साथ रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ United King से आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com
14: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए
11: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
9: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
8: HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिफ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: This is FM 100 Pakistan.
1: Forget your roots as we remember ours. This is FM 100 Pakistan.
2: It's not what you play, it's how you play it. FM 100.
3: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
5: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
7: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शरायत जवाबित लागू है।
2: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
3: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
2: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
6: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100
7: 31 saal fm100 aapki awaaz। Assalamu alaikum pakistan
8: assalamu alaikum pakistan
9: evening drive time with

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: प्लाट बनाए फरोख,
5: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
6: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: शरायत ज़वाबित लागू है।
8: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
9: शराय तो जवाबित लागू है।
10: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
11: ये क्या है भाई?
10: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
12: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
10: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
13: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
14: facebook.com/fm247365 fm247365।
15: This public service message is brought to you by fm100। traffic qawaneen aur isharon ki pabandi kijiye, inki khilaf warzi qabil-e girft jurm hai। traffic qawaneen ki pabandi kijiye।
16: Today's hit music,

0: Yellow. Ek, do, teen, yellow.
1: ये क्या है भाई?
2: एक, जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
4: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील. और प्राइस सिर्फ 64,49,000. प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें.
5: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना. इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए. ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए.
6: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की एवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں.

0: www.mytv.com. हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील. और प्राइस सिर्फ 64,49,000. प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें.
1: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो.
2: ये क्या है भाई?
1: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
1: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील. और प्राइस सिर्फ 64,49,000. प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें.
4: This program is brought to you by
0: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features.
5: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ. ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रही हैं. याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है.
8: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है.
9: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
10: हमारी जिम्मेदारी है.
11: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: Like us on facebook.com/fm247365.
12: Let's celebrate
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: FM 100's time check. It's 9 p.m. पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैज कैश है ना।
1: शरायत जवाबित लागू है।
2: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग, इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 021-111-022-022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
4: लाड बनाए फरो।
5: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
6: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: शरायत जवाबित लागू है।
8: हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।
9: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
10: शराय तो जवाबित लागू है।
11: 1, 2, 3 येलो, 1, 2, 3 येलो।
12: ये क्या है भाई?
13: 1, जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
14: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
13: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
15: This program is brought to you by
8: Hyundai लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।

0: येलो, एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: On facebook.com/fm247365
5: back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शराय तो जवाबित लागू है।
1: हेलो, गेस व्हाट, हंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडई डीलरशिप विजिट करें।
2: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो,
3: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
0: This program is brought to you by
1: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition aur wo bhi upgraded features.
5: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke sath sath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi, firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi, dehshatgardi ki targhib se mutalliq kisi bhi tarah ka mawad phailana, electronic jalsazi, spamming, dhoka dehi, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतलका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल है। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: FM 100's time check. It's 10 p.m. पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
1: शराइत तो जवाबित लागू हैं।
2: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग, इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
3: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।

0: प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स
2: Like us on facebook.com/fm247365
3: fm247365 fm100
4: 31 साल fm100 आपकी आवाज
5: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
6: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पाकिस्तान

0: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
5: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
6: शरायत जवाबित लागू है।
7: This program is brought to you by
8: हंडे लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स।

0: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना। शराय तो जवाबित लागू है।
1: This program is brought to you by
2: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition और वो भी upgraded features।
3: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहतरीन इस्तेमाल। मुनशियात खरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार करना। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365 FM247

0: मीट एंड मिठास बाय यूनाइटेड किंग। इस ईद पर 50% तक का बैंक डिस्काउंट हासिल करें यूनाइटेड किंग के तमाम आइटम्स पर। और सिर्फ यही नहीं, इस साल भी बरकत भरी कुर्बानी, जायके की रवानी हमारे साथ। रोस्ट करवाएं तंदूरी रान या हंटर बीफ सिर्फ यूनाइटेड किंग से। आज ही अपनी करीबी ब्रांच विजिट करें या डायल करें 02111022022 या विजिट करें www.unitedkingonline.com।
1: FM 24/7/365

अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सोने हबीबी। स्लीपलेस नाइट में कहूंगा आपको खुशामदीद। आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक, और 3 बजे तक करेंगे खूब हल्ला तेगुल्ला, वो भी सुकून वाला। इस हल्ले गुल्ले में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, बड़ी मेहरबानी होगी। ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी भी कर लेंगे तो भी मेहरबानी होगी। कोई ना कोई सवाल मैं फ्लोट करता हूं, आप देते हैं उसका जवाब। लेकिन क्योंकि ईद का दौर चल रहा है, ईद उल अजहा का, तो मैं सवाल नहीं कर रहा था काफी दिनों से, लेकिन आज सवाल भी करेंगे और सवाल के साथ साथ थोड़ी बहुत बात ईद की भी हो जाएगी। ईद का तीसरा दिन जो होता है ये बड़ा सुकून वाला दिन।

सारी थकावट उतर रही थी, क्योंकि ईद उल अजहा जो है ये मशक्कत का काम है भाई, बकरा खरीदने से लेकर और बकरा पेट में उतरने तक मशक्कत ही मशक्कत है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो खैर मैं चाह रहा हूं कि आज आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हों। रिलैक्स से मुराद ये कि मैं फुल हल्ले गुल्ले वाले फास्ट ट्रैक्स आज नहीं चलाऊंगा, ऐसा भी नहीं कि रोतू ट्रैक चला लूं, लेकिन जो ट्रैक्स चलेंगे आज के शो में वो थोड़े से मैलो से होंगे, हल्के फुल्की मौसीकी वाले होंगे, वो आपको पसंद आएंगे और होंगे पाकिस्तानी पॉप सॉन्ग्स, यानी कि नए और पुराने मिक्स, लिहाजा जितने भी यंगस्टर्स हैं वो भी भरपूर तरीके से इंजॉय करें और उनके साथ साथ जो यंगस्टर्स से बड़े हैं वो भी भरपूर तरीके से इंजॉय करें। वैसे आजकल जो ट्रैक्स नए आ रहे हैं, नए जितने भी सिंगर्स हैं उनमें से कितनों के नाम आपको पता है? यंगस्टर्स को तो पता है भाई, हसन रहीम कौन है, अब्दुल्ला कौन है, ताजी कौन है, मानी कौन है, बिलाल सईद कौन है, अशर कौन है, आपको पता है या नहीं पता? शहरयार रेहान कौन है, पता है आप लोगों को? बताइएगा हाँ पता है नहीं पता, पता होना चाहिए यार। हमारे सिंगर्स जो हैं वो नए सिंगर्स जो हैं वो जाहिर है यार जैसा दौर चल रहा है वैसे ही गाने पसंद किए जाते हैं, और गाने पसंद कौन करता है, बच्चे या यंगस्टर्स या खवातीन? तो इन्हीं की वजह से शोहरत मिलती है हर चीज को, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो गीत हो, मीडिया से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, ड्रामा हो, ट्रेंडिंग में ले आते हैं चीजों को। तो इसी तरीके से जो है ये सिलसिला चल रहा है। तो अभी शो का आगाज करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त मेलो से ट्रैक से, और ये ट्रैक आजकल बड़ा ट्रेंडिंग पर है और शहरयार साहब ने गाया है, ये आप लोगों को बता दूं, और शो का आगाज इसी से करेंगे। और उसके बाद जब आएंगे तो फिर आपसे कोई सवाल ववाल भी पूछ लेंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो पहला गाना एलो फड़ो आ रहा है, आ रहा है, बेफिक्र रहो, मैं साथ में बात भी कर रहा हूं और गाना भी आ रहा है। आ जा भाई, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये ऐसा लग रहा है ये चल नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चल नहीं रहा।

अब अभी जो आपको गाना सुनाया जाएगा वो कुछ वक्री टाइप का होएगा। आपको अभी हम सुना रहे हैं जो गाना वो आपने बहुत सुना है, तो जरा सुनिए किथे गया भाई गाना वाला। ये एलो फड़ो

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो, सब सेट हो गया जनाब, यानी कि समझ रहे हैं ना जी। तो जिन्होंने ज्वाइन किया है अभी अभी उनको दोबारा बता देते हैं, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुन। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ और बाकी बड़ी तफसील से मैं बता चुका हूं कि आज कौन कौन से ट्रैक्स चलेंगे, कैसे चलेंगे। जाहिर है रिलैक्सिंग मोड में रखना चाह रहा हूं मैं आपको, तो ऐसा फुल टाइम हल्ला गुल्ला नहीं होगा। इससे सिर्फ एक शख्स जो है वो परेशान होगा, जिसका नाम है समी शेख। वो कहेगा नदीम भाई यार ऐसे उदासी वाले गाने और कैसे गाने, और उदासी वाला कोई गाना नहीं होगा, लाइट से मेलो से ट्रैक्स चलेंगे। तो जनाब सवाल की जानिब भी मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ले जाया जाए, एक छोटा सा ऐसे ही सवाल कर लेते हैं आपसे, अगर आपका दिल के चाहे तो जवाब दे दीजिएगा कि वो क्या चीज है, वो क्या है जो हमेशा हमारे सामने होता है मगर हमें नजर नहीं आता। वो क्या है जो हमेशा हमारे सामने होता है मगर हमें नजर नहीं आता, ये आपने सवाल का जवाब देना है 3636 पर। और अब बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। सबसे पहले फीता किन्होंने काटा भाई, नदीम भाई प्लीज भाई ये सुफियाना कलाम सुनवा दे। नहीं सर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये आप मसला पता क्या है भैया, आप सबसे पहले तो आपने अपना नाम नहीं लिखा। अच्छा पश्तो का सुफियाना कलाम है, आप सबसे पहले तो अपना नाम लिखा करें भैया। मैं बोलता हूँ कि मैसेज करने का तरीका बताता हूँ, जब कि KHI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज और उसको सेंड कर दें 3636 पर। और एम अब्बास साहब कह रहे हैं सबको सलाम, बिलाल सईद का सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा सबको। बिलाल सईद का जरूर कर देंगे जनाब, अभी बस वो वही चलेगा अभी। उमर रुबाब आ गए हैं, हैल जी कह रहे हैं नदीम सलाम, मैं आपके सुनने वालों को भी सलाम। शुवा खुरक खुरक दी यानी खाना खाया। और जी गावोवी ओके टेक केयर नदीम, आप भी टेक केयर करें जनाब। सभी साहब आ चुके हैं और कह रहे हैं सलाम वालेकुम नदीम भाई कैसे हैं आप। गुफरान भाई और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है। और आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई मसला हुआ है, बड़ा तेज है भाई ये शख्स कुछ दिन से, इसीलिए ना रिक्वेस्ट ठीक से पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल सही समझ रहे हो, अकलमंद इंसान हो तुम, शादी हो जानी चाहिए अब तुम्हारी। संजू भी आ गई हैं, संजू ने तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है, खुसूसी तौर पर आपको बताइए नौरीन और जरीन नूर और उमर रुबाब, नाराज उमर रुबाब को भी उन्होंने सलाम कहा है। और कौन है जनाब आगे, कोमल आ गई है दुबई से। कोमल कैसे हो, कह रही है अस्सलाम वालेकुम सब लिसनर्स को, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक सब FM 100 की फैमिली को, आपको भी ईद मुबारक भाई। दुबई में क्या ऊंट ऊंट कटे हैं, ज्यादातर ऊंट कटते हैं या बकरे या गाय भी कटती हैं, जरा ये तो बताइएगा। कोमल बताना जरूर, ये ना हो तुम बताओ ना। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई कैसे मिजाज हैं, ढेरों सलामती की दुआएं तमाम हसीन तरीन समातों को मेरी तरफ से सलाम और ढेरों दुआएं। और आज 30 मई को मेरी बड़ी बेटी रजमा रजा की बर्थडे है और वो मेरे पास आई हुई है। अरे वाह भाई वाह, कराची से उसने उसको विश करना है और ढेरों दुआएं और सॉन्ग डेडिकेट करना है। बिल्कुल करेंगे रजमा, अगर सुन रही होगी तो बताइएगा। हाँ ऐसे नहीं हम डेडिकेट कर रहे हैं और इसलिए हम ही सुन रही हैं, बेटी को भी सुनना चाहिए ना। अलबेला बासी शहजादा आ गया है और कह रहे हाय डियर, बात की अदा से ही अलबेला दीवानी दीवाना कर देता है, रहे दीद मेरी बुलंदी फलक तक है, वो ही सिर्फ मकाम रखता है रखाना है, जब तुम मुस्कुराते हो इन्हें सुने हो और भी तो पागल कर देता है। अरे वाह वाह वाह बब्बल, तुम तो शायर हो भाई फुल टाइम। अब्बास भाई कह रहे हैं ओके जी। और मेरी प्यारी बहन संजीदा को भी सलाम और ढेरों सलामती की दुआएं। ये नौरीन तौसीफ के मैंने मैसेज पढ़े थे, रमजा जो है उन्हीं की साहबजादी हैं जिनकी बर्थडे है, बर्थडे
1: यानी सालगिरह
0: बर्थडे।
1: और हाँ भाई फरीन क्या कह रही है? फरीन कह रही है मैं कोमल नहीं हूँ, आपके साथ कोमल का भी मैसेज था। तो फरहीन जी दुबई से, तो फरहीन जी बताइए वहां कितने ऊंट कटे। नालो नाल मैसेज होते हैं तो इंसान पढ़ लेता है, तो मैं वैसे भी रवानी में पढ़ रहा होता हूँ। अच्छा जी आए हाय क्या बात है भाई, फरमाइश मार दी इन्होंने। किन्होंने? हमारे प्यारे से समी ने। और आ गई है जनाब हमारी मुश्क। मुश्क ने क्या भेज दिया भाई, क्या भेज दिया भाई, बहुत दुआएं हैं। मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करूंगी लेकिन मैं तुम्हें दुआओं में मांगना छोड़ दूंगी। आय हाय हाय हाय, तुम मेरे लिए जान से प्यारे रहोगे लेकिन मैं तुम्हें जान कहना छोड़ दूंगी। मैं सांस तो लूंगी लेकिन मैं जीना छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारी फिक्र तो करूंगी लेकिन मैं तुम्हें बताना छोड़ दूंगी। तुम्हारे बाद मैं रोऊंगी नहीं लेकिन मैं हंसना छोड़ दूंगी। मैं जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूँ मैं रोमांटिक होता जा रहा हूँ। मैं तुम्हें याद तो करूंगी लेकिन मैं तुम्हें पुकारना छोड़ दूंगी। मैं किसी से तुम्हारा जिक्र नहीं करूंगी लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहूंगी। मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं करूंगी लेकिन मैं तुम्हें नजर आना छोड़ दूंगी। होए होए होए होए, क्या खतरनाक तरीन जो है ये इंतखाब भेजा है भाई मुश्क। और उन्होंने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू भी कह दिया। अच्छा मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी अयूब लाला भी आ गए हैं, कह रहे जाने जिगर या हबीबी आपको और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज और पढ़ेंगे और उसके बाद जो है, अरे नहीं दो मैसेज और पढ़ेंगे और उसके बाद हम आपको ट्रैक की जानिब लेके जाएंगे। इकरा कह रही है सलाम कैसे हैं आप, सवाल का आंसर है साया और हवा और एक सॉन्ग। अच्छा मैं बच्चा कोशिश करूंगा, वादा नहीं है कि आपने जो सॉन्ग गाया वो चला दूं। और कह रही प्ले करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और एक काशिफ आ गए हैं जनाब, काशिफ साहब क्या कह रहे हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं भाई, वाह भाई वाह। और फरहीन कह रही हैं, ओए ओए फरहीन आपने इक्तवास भेज दिया है और मतलब शेर भेज दिए। जिंदगी हमने किए तुझसे गुजारे जैसे, ढूंढ पाए तो कभी ढूंढोगे हमारे जैसे। किरचियां चुनते हुए उम्र गुजर जाती है, कोई देखे तो सही खाब हमारे जैसे। वाह वाह वाह वाह फरीन, अरे तुम तो वहां जाके शायर मान गई हो। हाँ भाई बाकी मैसेज सब बीवी बाद में होंगे। और अभी बिलाल सईद के ट्रैक की जानिब जा रहे हैं जो कि हमारे अब्बास साहब ने फरमाइश की थी, बिलाल सईद की एलो पढ़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। और जनाब स्नैप चैट आपने ट्रैक सुना और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और कुछ वजाहत ना इल्तिजा कीजिए, सच कहा है तो हौसला कीजिए। हमने माना कि मोतबर है दिमाग, दिल ना माने अगर तो क्या कीजिए। अब भी तो यही ये रहते हैं, खुद को भी वक्त कुछ तो दिया कीजिए। करना चाहे जो शहर की तामीर, अपने ही घर से इब्तिदा कीजिए। आईने टूट कर नहीं जुड़ते, दोस्तों को न यूं खफा कीजिए। लफ्ज से भी खराश पड़ती है, तबसरा सोच कर कहा कीजिए। झूठ से भी बुरा है आधा सच, इससे बेहतर है चुप रहा कीजिए। अमजद इस्लाम अमजद, और ये इंतखाब भेजा हमारी प्यारी जी मैना नौरीन ने। हैं जी ती हैं जी, लाला क्या कह रहे हैं, कमाल की फनकारा है भाई। जीबीएन में, जीबीएन में वार भी दिल पे राज भी दिल पर। ओए होए होए होए होए, क्या यार जबरदस्त जुमला है। कमाल की फनकारा है जीबीएन, वार भी दिल पे राज भी दिल पे। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है लाला। लगता है आपको आज बहुत याद आ रही है। समी कह रहे हैं कि नदीम भाई गुजर गई वड्डी ईद भी, मैंने इतना गोश्त नहीं खाया पर फिर भी सुबह थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, इसीलिए मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया। अभी सिस्टर आई थी तो बारबेक्यू बनाया था कबाब पर, मैं भी इतना नहीं खाया। गोश्त भी अपना है और पेट भी अपना है, पेट को अपना समझो भाई, गोश्त भी अपना ही है। सही बात कही आपने। सगून के साथ फ्रीजर में रखो यार, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहो। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा आपको ये मेरे साथ एक अजीब सा, मतलब मेरी आदत अजीब सी है, मैं अपनी पसंद का भी खाना जब देख लू ना बहुत सारा परोसा हुआ है जबरदस्त किस्म का, तो देखकर मेरा पेट भर जाता है। मुझसे खाया नहीं जाता, यानी कि समझ रहे ना आप। अब्बास साहब कह रहे हैं थैंक यू, गाना चल गया ना भाई। इफ्तिखार भाई आ गए हैं और इफ्तिखार भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। नदी भाई कैसे हैं, ईद कैसी गुजरी आपकी? शो की वजह से मैंने सोया, वैसे एक तक सो जाता हूँ। सबको सलाम का इफ्तिखार भाई, वालेकुम अस्सलाम। आज गाने आपको पसंद आएंगे। मुश्क का इंतखाब जबरदस्त था भाई, क्या कमाल का इंतखाब था वाकई में। इस तरह तो होता है इस तरह। चले मुश्क की बात हुई तो मुश्क को हम एक गाना डेडिकेट करते हैं जनाब। मुश्क ये ट्रैक आपके लिए, एल्लो फड़ो।

वेलकम बैक एंगी भाई। जुनैद जमशेद का ट्रैक उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और हमारे अयूब लाला बहुत खुश लग रहे हैं। क्या बात है भाईजन। कह रहे नदीम भाई, कोई किसी पर दम कर सकता है? अगर उस दम का असर होता है तो मुझे बताइए आप, ताकि मैं भी GBN पर दम कर दूं। और जनाब कादिर बख्श बलोच साहब कह रहे हैं, नदीम भाई आपको और सब लिसनर्स को सलाम, कैसे हैं आप? बिलावल भाई और संजू जी को सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा। बिल्कुल कर देंगे। और अलबेला भाई कह रहे हैं, मेरा यार दोस्त मुझे ईद के दिनों में गोश्त के शॉपर लेकर आया आए थे, मैंने कहा मेरे घर पर चटाई ये मुझे समझ में नहीं आया कि अच्छा, मेरे घर पे छोटे पेट वाली आवाम रहती है, मुझे नहीं चाहिए, वापस ले गया। शायद यही लिखा हुआ है अलबेला भाई, यही थी ये कुछ और ही। और जनाब इफ्तिखार साहब का मैसेज तो हो गया था, और हमारे लाला जो हैं वो कह रहे हैं कि नदीम भाई बहुत खूब। और नौरीन बहना कह रही हैं, इस पहेली का आम और मुख्तसर जवाब है, हवा वो हमारे सामने भी होती है और हमारे इर्द गिर्द भी, मगर नजर नहीं आती, और मौत भी इसका जवाब हो सकता है। खैर ये आपके दोनों जवाब हमने जो है नोट कर लिए हैं, लेकिन हम इसका जवाब आपको थोड़ी देर में देंगे। तड़पता है याद में जिसके जिसकी ये दिल ए नादा, तड़पता है याद में जिसकी ये दिल ए नादा, होती नहीं उससे मुलाकात चंद पलों की, होती हैं जिनकी मुलाकातें महबूब से अपने, खुशियां तो हैं बस उन्हीं खुश नसीबों की, मुद्दतों हुई ना हुई मुलाकात एक शख्स से, भला कैसे ईद हम जैसे दिल जलों की। वाह वाह वाह वाह, कैसे कैसे शायर हैं यार। और आज नौरीन बहना ये कैसे शेर भेज रही है, हालांकि रिज्मा की जो है वो सालगिरह है, तो सालगिरह पर कुछ यानी कि केक टाइप के मीठे मीठे से शेर होने चाहिए, यानी कि समझ आइए ना आप। अब सालगिरह मुबारक भी कह दें हम, लेकिन आज कोई ऐसा गाना है नहीं जो सालगिरह मुबारक वाला हो, तो मैं सोच रहा हूं कि गाना कौन सा चलाएं। ये वाला गाना भी अच्छा है वैसे, अभी चलाएंगे हम, अभी उनको विश करेंगे। अनीस कह रहे हैं, नदीम भाई बचपन में दूध जलेबी खाई है, जो इतना मीठा बोलते हैं, क्या बात है आप। अनीस साहब हम मीठा नहीं बोलते हैं, मीठा बोलने के लिए दूध जलेबी की जरूरत नहीं होती है, और दूध जलेबी मीठा बोलने के लिए नहीं खिलाई जाती है, यानी कि समझ रहे हैं ना। हाँ वैसे दूध जलेबी खानी चाहिए, मुझे बहुत यार अम्मी याद दिला दी आपने, अम्मी जो है ना दूध जलेबी जो है उसके प्याले बनाकर फ्रिज में रख देती थी रात को, और सुबह सुबह खिलाती थी। हाय क्या दिन थे यार वो। संजू गांव फौरन आ जाओ। समी साहब कह रहे हैं कि जी मैं इंतजार कर रहा हूँ, नदीम भाई तो करते रहे। मैंने कब कहा कि आप इंतजार ना करें, और करते रहो इंतजार यार, गाना चल जाएगा शहजादे, अब डोंट वरी डोंट वरी। अच्छा मैं चाह रहा था थोड़ा सा मेलो और थोड़ा सा सुकून वाला शोर, मगर मैं पता नहीं क्यों शरारतें कर रहा हूँ। MG आ गई हैं और कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शो बहुत अच्छा है आपका, और ईद कैसी गुजरी है आपकी? मैंने तो ईद के दिनों दोनों शोज मिस कर दिए। ओए होए होए, ये बहुत गलत किया। चले भाई इसी बात पर हम सबसे पहले तो बर्थडे विश करेंगे रमजा रजा को। रमजा रजा की बर्थडे है,

Happy birthday, Ramza Raza. सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हमारी जानिब से और आपकी प्यारी सी अम्मी की जानिब से, नौरीन तौसीफ की जानिब से। तुम जियो हजारों साल और हर खुशी जायज खुशी मिले तुम्हें। हैप्पी बर्थडे टू यू। और अभी एक बार एक ऐसा ट्रैक जो है वो हम रिमजा को डेडिकेट करेंगे। किन की जानिब से जनाब? नौरीन तौसीफ की जानिब से और हम सब की जानिब से। एक बड़ा प्यारा सा ट्रैक है जनाब, न्यू ट्रैक है और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। हेलो फड़ो।

वेलकम बैक रिज़मा, हमने आपका नाम गलत ले दिया, रिज़मा रमजा बोल दिया, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। भाई रिज़मा को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और सबसे बड़ी दुआ मेरी जानिब से वो ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। नसीब अच्छे होना तो माँ बाप सुकून में रहते हैं कि बच्ची सुखी है, और बस यही चीज जो है वो इंसान को मुतमईन रखती है। अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे, और जो भी तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, जायज ख्वाहिशात हैं, वो अल्लाह ताला जो है वो पूरी फरमाए। ये हमारी दुआ है और आपकी अम्मी की जानिब से भी ये दुआ है। जिंदगी जो है वो कुछ लेने और देने का नाम है, सिर्फ लेने का नाम ही नहीं है। अगर आप किसी से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको कुछ अच्छा करना पड़ता है। बैठे बैठे सब अच्छा नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ आपको भी आपके किए का सिला मिलता है। इंसान जो कुछ भी अपनी जिंदगी में करता है वो घूम फिर कर उसी के पास फिर आ जाता है। यानी कि आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो ये ना समझिएगा कि आपके साथ अच्छा नहीं होगा, बस ये अकीदा दिल में होना चाहिए कि आपके साथ भी अल्लाह जरूर अच्छा करेगा, आज नहीं तो कल, और वाकई में वो घूम कर आपकी जानिब जरूर आता है। इसी तरह जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, वो भी घूम कर किसी ना किसी वक्त आपके पास जरूर आता है। तो अल्लाह ताला हमें हमेशा जो है अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो रिज़मा तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं हैं, गलत नाम प्रोनाउंस करने के लिए माजरत चाहूंगा, हो जाता है कभी। मेरी आज जुबान पता नहीं क्यों फिसल रही, बस एक जुबान फिसली थी, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, आपको पता नहीं है। और मैसेजेस कर रहे हैं आप, किए चाहे स्पेस आपका नाम आपका मैसेज और उसको सेंड करें 3636 पर। अच्छा मैंने विश तो खैर आप सबको की है, लेकिन मेरी प्यारी सी आंटी भी सुन रही होंगी, आंटी को मैं फोन भी नहीं कर सका। सबसे पहले तो आंटी माजरत कि मैं आपको फोन नहीं कर सका, और आपको ईद की ढेरों खुशियां, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी लिसनर, बुजुर्ग लिसनर जो हमें सुनते रहते हैं, उन सब के लिए ढेरों मेरे लिए मेरी जानिब से, हम तमाम FM 100 के जो ये फैमिली है इनकी जानिब से ढेरों दुआएं हैं, जिनमें शहाब अंकल भी हैं, अयूब जरदारी अंकल भी हैं, हमारी प्यारी सी मोहम्मद मिसेज मोहम्मद अली, हमारी प्यारी सी अम्मा जो हैं, दादी जो हैं, और उसके अलावा हमारी प्यारी सी चाची हैं, और हमारी प्यारी सी आंटी बेतहाशा, और अजरा शबीर जी जो हैं वो हमारी बड़ी हैं, उनके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं। जितने भी हैं, अगर मैं किसी का नाम जो है वो मिस कर रहा हूं तो नदीम ने मेरा नाम नहीं लिया, ऐसी बात नहीं है, वक्त महदूद सा होता है। तो ये जो मैं ये कहता हूं ना कि आप सबके लिए, तो जो अल्लाह है वो सब सुन रहा है, और उसको पता है कि दिल में इस शख्स के कौन कौन है। मेरे दिल में आप लोग सब हैं, तो आप सबके लिए बेतहाशा दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। कितनी दुआएं हो गई भाई, मैसेजेस की जानिब भी बढ़ते हैं। और MJ के मैसेज के बाद मीर बादशाह बलोच साहब कह रहे हैं नदीम भाई नसीब वो लाल अगर हो जाए, नहीं हो सकती भाई, वो लाल ही है। इफ्तिखार भाई कह रहे हैं कि नदीम भाई मैं सिंधी का शायर हूं, अरे क्या बात है, आपकी इजाजत हो और कभी मौका मिला तो आपके शो में शामिल शायरी करूंगा। इफ्तिखार भाई जुमेरात वाले दिन रेगुलर अब क्योंकि शो शुरू हो चुके हैं, और जुमेरात वाले दिन जो है वो शेर व शायरी के हवाले से हमारा शो होता है, उसमें अपने अपने इंतखाब लेकर सभी आते हैं मुख्तलिफ शोहरा के, और जो खुद शायर हैं तो उनकी क्या ही बात है, वो अपना अपना कलाम लेकर आते हैं। तो आप भी जरूर शामिल होइएगा और अपने अपने जो आपने शायरी की हुई है उसको शामिल कीजिएगा। जिंदगी आ गई है और कह रही हैं कि नदीम जी ऐसा अचानक हमारी जिंदगी में होता है, अकल हैरान रहती रह जाती है, इंसान का भरोसा खत्म हो जाता है। मेरी दोस्त मेरी जिंदगी से जुदा हो गई, खुशफहमी थी मेरी। अच्छा खुशफहमी जो है ना, एक तो होती है खुशफहमी और एक होती है बदफहमी। बदफहमी जो ये होती है कि इंसान जो है वो खुद से अंदाजे लगा लेता है
हर सिचुएशन को समझना चाहिए कि सामने वाला किस सिचुएशन में है। जिंदगी आपको, ये मैं आपको बात बता रहा हूं, तो हमेशा बड़ा परखिएगा। दोस्त जो होते हैं ना, अच्छे दोस्त, वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और जो आपके साथ सिंसियर हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बहुत अच्छा है, आपके साथ बहुत अच्छा है तो वो फरिश्ता है, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, उससे गलती हो सकती है कभी, कोई भी इंसान हो। तो परखिए जरूर, और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचिए, ये मेरा आपको जिंदगी मशवरा है। आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि दोस्त ऐसे ही नहीं मिलते, और आपकी दोस्त जो है वो आपसे जुदा हो गई या आपने जुदा कर दी, ये अलग बात है, क्योंकि आपकी ये खुशफहमी जो है ना, इससे मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है, या तो आपने कोई उम्मीद वाबस्ता की होगी, लेकिन उसकी कंफर्मेशन रखिए, यानी कि समझ रही है ना आप। जिंदगी सर दर्द शरीर है, माफी चाहती हूं। अरे आपका सर अभी दूर करते हैं, आपको एक बहुत अच्छा सा गाना सुनाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको वो गाना पसंद आएगा, और थोड़ा सा मेलो सा ट्रैक है, और ये ट्रैक के साथ साथ अभी तो हम ये जिंदगी को ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं, ताकि उनका सर दर्द थोड़ा सा कम हो, और उसके बाद जो ट्रैक चलेगा वो ट्रैक चलेगा जनाब हमारे समी साहब जो हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, हमारे होने वाली भाभी को डेडिकेट करना चाह रहे हैं, तो दोनों ट्रैक हम साथ साथ चला रहे हैं, छोटे छोटे से ट्रैक हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। फिलहाल थोड़ा सा म्यूजिक सुनने पहले।

जी वेलकम बैक मिल गया आपको और जिंदगी आपका सरदर्द अभी खत्म करते हैं हम, ठीक है जनाब। तो ये ट्रैक आप सुनिए सुकून से, दोनों ट्रैक बड़े सुकून वाले हैं, खामोशी के साथ सुकून के साथ सुनिए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। और दूसरा ट्रैक समी तुम्हारा वाला।

अच्छा जनाब, बढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब और उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी ट्रैक बहुत पसंद आएगा। ये हम जरीन नूर की जानिब से डेडिकेट करते हैं संजू को।

सजी हुई है। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर के चाहे लिखिए स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए। 3636 पर एक सवाल मैंने पूछा है आप सबसे कि वो क्या है जो हमेशा आपके सामने होता है मगर आप उसे देख नहीं सकते। इस सवाल के जवाब चंद लोगों ने दिए, किसी ने मौत कहा, किसी ने हवा कहा। खैर जी अभी जवाब आप लोगों के आ रहे हैं और नौरीन भैना कह रही हैं साहिल पर खड़े हैं। अच्छा ये ट्रैक की रिक्वेस्ट है और कह रही हैं संजू को डेडिकेट कर दीजिएगा। बिल्कुल कर देंगे जनाब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। ट्रैक अगर मैं की शीट में अभी देखता हूं होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि मेलो से ट्रैक है तो जरूर होगा। और जनाब अयूब लाला कह रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब के सॉन्ग जो फरमाइश आए अगर क्यू शीट में है तो प्ले कर दीजिएगा। लाला आप भी ग्रेट हैं, आप बहुत ही ग्रेट हैं आप। खैर मुझे पता है जावेद अख्तर साहब के ट्रैक्स आपको बहुत पसंद है, कोशिश करेंगे लेकिन पक्का वादा नहीं है आज आपसे। तानिया हसन जी के मैसेजेस जो हैं वो मैंने पढ़ने हैं। तानिया जी आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मैं आपके मैसेजेस अभी तक मैंने पढ़े नहीं, आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं, यानी कि समझ रही है ना आप। बल्कि हम आपको एक गाना भी डेडिकेट करेंगे तो सुनियो। इतने अच्छे अच्छे से इंतखाब आ रहे हैं तो लिहाजा अगर आप भी कोई इंतखाब भेजना चाहें तो जरूर भेजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लाशौरी तौर पर आपसे वो काम हो जाता है जो आप करना नहीं चाहते और उसका फिर जो नुकसान होता है वो इंसान को लंबे अरसे तक झेलना पड़ता है। खैर जी इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि एक और ट्रैक की जानिब जाने, एक ट्रैक की जानिब जाया जाए। तो आपको एक ट्रैक सुनाते हैं और सजाद अली का ही सुनाते हैं, ठीक है जनाब। और लेकिन वो वाला ट्रैक नहीं है जो कि जिसकी फरमाइश की गई, लेकिन ये ट्रैक भी बहुत अच्छा है, उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आएगा। एलो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। मैं लिखूं तो आ जाए ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। मैसेजेस कर रहे हैं आपके एच आई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड करेंगे आप 3636 में। जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने स्लीपलेस नाइट में। मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है जनाब 3 बजे तक। और आज जो मेलोसी महफिल

वेलकम बैक कहेंगे हाथों में लेकर एक टूटा सपना ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मेलो से ट्रैक चल रहे हैं, रात भी जो है वो अपना सफर तय कर रही है और कुछ मूड भी ऐसा हो गया है, क्या अल्लाह अल्लाह करें। कादिर बख्श साहब कह रहे हैं आपके सवाल का जवाब है सूरज। अच्छा कादिर बख्श साहब, माशाल्लाह से आपने जो सोचा तो गलत नहीं सोचा, गो के सवाल का जवाब ये नहीं है, लेकिन जैसा सवाल किया है उसमें आपके जवाब को गलत भी नहीं कह सकते कि वो कौन सी चीज है जो आपके हमेशा सामने होती है मगर आप उसे देख नहीं सकते। सूरज हमारे सामने होता है मगर हम उसको देख नहीं पाते, ऐसा है। लेकिन खैर ये इसका जवाब नहीं है, लेकिन हमारे सामने रात को तो नहीं होता ना सूरज, ये वो चीज है जो हर वक्त हमारे सामने होती है। लेकिन यानी कि समझ रहे हैं ना आप भाई, आपकी आवाज सज्जाद अली से मिलती है जब आप गाना सुनाते हैं। जरीन नूर कह रही हैं, अरे मेरी बहन थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ऐसी कोई बात नहीं है, वो भाई बहुत बड़े सिंगर हैं और हम जो है वो आप लोगों के सिंगर हैं बस। आप लोगों के कहने पर गाना शुरू किया और मेरी प्यारी सी बहना जरीन नूर ने जवाब दिया है सवाल का और दुरुस्त दिया है। और अभी कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी तो तानिया हसन जी का जो मैसेज आया हुआ था ना, बड़ा जबरदस्त सा मैसेज था, वो उसी से रिलेटेड था। लेकिन वही वाली बात होती है, वक्त पर बात की जाए तो वो मजा करती है। वो दम के हवाले से जो अयूब लाला ने एक बात की थी तो उस पर एक चुटकुला उन्होंने कहा था, बड़ा जबरदस्त सा, मगर वो अब अपनी अहमियत खो देगा अगर मैं अभी बोलूंगा तो। अभी क्योंकि मूड भी चेंज हो गया। तो तानिया जी आई एम रियली सॉरी इतनी देर में आपका मैसेज जो है वो मैंने पढ़ा, लेकिन आपको जो गाना डेडिकेशन के लिए कहा है वो जरूर हम करेंगे। तो ईद का जो दिन है, पहला दिन से क्या पहले दिन की तो बात नहीं करेंगे, बल्कि ईद से एक दिन पहले तक जो है वो बड़ी मसरूफियत रहती है और उसके बाद फिर ईद के जो दिन चलते हैं। अच्छा ईद उल अजहा में एक और भी बड़ी एक मजेदार किस्म की बात ये होती है जो कि ईद के बाद रोनुमा होती है, और वो होती है कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि बारबेक्यू पार्टीज जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। दो सहबाब मिलकर बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं, फैमिलीज जो हैं वो मिलजुल कर बारबेक्यू का एहतमाम करते हैं और अच्छा वक्त गुजर जाता है। तो उम्मीद है, मुझे यकीन है बल्कि इस बात का कि जो सुनने वाले हैं उनके भी कुछ इरादे इस तरीके के जरूर होंगे कि कुछ बारबेक्यू का सिलसिलेकार हो जाए, या भी प्लानिंग चल रही होगी या पहले से डिसाइड हो चुका होगा। तो ये भी जिंदगी के साथ साथ सिलसिले जो हैं, ये छोटी छोटी सी खुशियां जो हैं ये बड़ी अच्छी लगती हैं और होनी भी चाहिए। जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीली भी होनी चाहिए, ये मैं पहले भी कई मरतबा आप लोगों से जिक्र कर चुका हूं। तो मैसेजेस कर रहे हैं आपके एच आई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर। और अभी हम आपको लेकर चलते हैं जनाब, क्योंकि हमने तानिया हसन जी की बात की तो उनको एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैक डेडिकेट करेंगे, एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको और उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रैक बहुत पसंद आया होगा, पॉप ट्रैक फाखिर की आवाज। नए ट्रैक्स भी चल रहे हैं साथ साथ में, पुराने ट्रैक्स भी चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे पसंद आ रहे होंगे। और जनाब मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर। अच्छा ये हमारे चुटकुला भेज दिया यार, अभी कोई भी ऐसा सिलसिला जो है ना बड़ा मैलो सा सिलसिला चल रहा है, लेकिन फिर भी हम आपका चुटकुला पढ़ेंगे। लेकिन पहले भाई आपकी आवाज, अच्छा ये तो हो गया था जरीन नूर का सज्जाद अली से, वो कह रही थी मिल रही। जंगल में एक शेर की शादी हो रही थी, जब बारात जाने लगी तो एक चूहा बारात के आगे नाचने लगा। शेर ने उससे कहा तुम क्यों नाच रहे हो, शादी तो मेरी हो रही है। चूहा बोला शादी से पहले मैं भी कभी शेर हुआ करता था। भाई बहुत खूब, लेकिन ये बहुत पुराना चुटकुला है, लतीफा है जो आपने भेजा। तो भाई फरहीन कह रही हैं कि हम आपके साथ हैं। तो अभी और गाने जो चल रहे हैं आपने उनके बारे में कुछ अपनी राय का इजहार नहीं किया। नदीम भाई जवाब मैंने दुरुस्त दिया है, नाम आपने जरीन नूर का ले लिया। आज यकीन मारिए नौरीन कि दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा। ये आपने सही नोट किया कि मैसेज मैं किसी का पढ़ रहा हूं और नाम किसी का ले रहा हूं। भाई जो जवाब दुरुस्त दिया था वो मेरी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ ने दिया था, और सामने जो उसके बाद जो मैसेज था वो जरीन नूर का, वही सज्जाद अली की आवाज मिलती है। तो मैंने जो है वो नाम ले दिया जरीन नूर का, अपनी बहन का, दोनों बहनें हैं हमारी। लेकिन ये पता नहीं आज कुछ दिमाग अजीब सा हुआ हुआ है। तो मेरी प्यारी सी बहना अगर इस तरह की कोई गलती हो जाए तो यानी कि समझ आएंगे ना आप, माफ कर दीजिएगा। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आज क्या हो रहा है आप लोग ये भी तो बताइए। अब जैसे कि बारबेक्यू के हवाले से मैंने जो बात की, तो अभी हमारे मैसेज एक आया जिनको हमने गाना डेडिकेट किया, यानी कि तानिया हसन जी, वो कह रही हैं जी हमारे तो पहले से ही बारबेक्यू का जो है वो इंतजाम हो गया है, मतलब डेट डिसाइड हो गया है और बारबेक्यू का जो है वो एक एहतमाम होने वाला है। तो ये सिलसिला भी बड़ा मजेदार किस्म का होता है। तो ये तो चलो फैमिलीज का सिलसिला है, दोस्त अहबाब भी ये सिलसिला कर रहे होते हैं कि सबसे पहले तो तलाश होती है कि हमारा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसकी छत पर हम बारबेक्यू पार्टी कर सकते हैं, कोई ये होता है। और फिर ये लड़कों की पार्टी के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि कितना मजेदार किस्म का सीन होता है। कोई गोश्त लेकर आ रहा होता है, किसी के पास गोश्त नहीं होता, तो वो पैसे जो है वो पार्टिसिपेट करता है पैसों की सूरत में, जिसकी कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, रोटियां चटनी वगैरह। और फिर उस दोस्त की तलाश की जाती है कि भाई जो है वो साउंड सिस्टम कौन लेकर आएगा। ये तमाम चीजों का एहतमाम होता है और बड़ा मजेदार किस्म का होता है। और फिर जब बारबेक्यू होती है तो फुल हल्ला गुल्ला चल रहा होता है साथ ही साथ, ये तमाम मजे साथ ही साथ चल रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं, अभी जो मैं मेलो से ट्रैक चला रहा हूं इससे थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो रहा है या नहीं हो रहा, ये जरूर बताइएगा। तो अभी हम आपको एक और बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब लेकर जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी पसंद आएगा। अच्छा अभी इत्तेफाक ऐसा है, चलें आपको नया वाला सुनाते हैं ना, अभी दो तीन तो हमारे पुराने पॉप ट्रैक चल गए, तो अभी आपको एक न्यू मुर्तजा कजलबाश का एक ट्रैक सुनाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। समाप्त फरमाइए।

वेलकम बैक कहेंगे सुने आप सबको। उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रैक पसंद आया होगा। और हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ कह रही हैं कि बहुत पुरसकून माहौल बना हुआ है, शो का जबरदस्त कलेक्शन, वाह नदीम भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे यहाँ तो बारबेक्यू पार्टी कल होगी, बहुत बहुत अच्छी रही, हो गई और बहुत इंजॉय भी किया। अरे जबरदस्त जबरदस्त। अयूब लाला कह रहे हैं आपने ईद पे किसको कुर्बान किया? अयूब लाला आपने ईद पर किसको कुर्बान किया? ये सलीम मेमन साहब का मैसेज है अयूब लाला के लिए। सुनियो आज सॉन्ग चल सकता है बालो बतिया। भाई हमारे लोड शेडिंग हो रही है इसलिए बतियां नहीं बल सकती, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा जनाब। और सवाल जो मैंने पूछा हुआ है बस उसका जवाब कुछ ही देर में आप तक पहुंच जाएगा। सवाल ये था कि आप लोगों ने ये बताना है कि वो क्या चीज है जो कि आपके सामने होती है मगर आपको नजर नहीं आती। ये सवाल था और इसका जवाब सिर्फ एक नहीं दुरुस्त दिया है और वो नौरीन तौसीफ है, जरीन नूरी बोला मैंने, ठीक है ना जी। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा होता है, पता नहीं क्या है नौरीन बहना, कि आप कहना कुछ चाह रहे होते हैं हो कुछ जाता है। और ऐसे में फिर की होता है यही तो नहीं पता। चलें आपको एक और बहुत ही धमाकेदार किस्म का ट्रैक सुनाता हूं और उम्मीद करता हूं पसंद आएगा। इस ट्रैक को सुनने के बाद मेरा मूड बड़ा चेंज हो जाता है, बहुत दिल पे लगता है यार ये ट्रैक, ब्यूटीफुल ट्रैक।

क्या गवाया। कोशिश किया करेंगे, दिलों से मत खेला करें, क्योंकि दिलों से खेलने से जो टूटे हुए दिल हैं, दुखे हुए दिल हैं, उनकी आह अल्लाह ताला फौरन सुनता है। कोशिश किया करें दिलों से ना खेलें। हाय हाय, क्या गाना था यार, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अच्छा जी, थैंक्स फॉर प्ले माई रिक्वेस्ट समी भाई, इतनी जल्दी ख्याल आ गया आपको। समी भाई भी खामोशी से सुन रहे हैं और तमाम लिसनर्स अब खामोशी के साथ सुन रहे हैं मुझे, माहौल बना दिया है। खैर जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। नादिया भी सुन रही हैं शो के आगाज से ही, और नादिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नादिया जी को भी हमने ट्रैक डेडिकेट करना है। और एक लड़की दुबई से सुन रही है हमें खामोशी के साथ, ट्रैक भी पसंद आ रहे हैं, जिसका नाम है फरहीन। तो फरहीन को भी हमने ट्रैक डेडिकेट करना है, बड़ा जबरदस्त। लेकिन अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और जरीन नूर का जवाब आया है हवा। तो सवाल ये था कि वो क्या चीज है जो कि हमारे सामने है मगर हमें नजर नहीं आती है। इसका जवाब नौरीन ने सिर्फ सही दिया था, और इसका जवाब है हमारा मुस्तकबिल। मुस्तकबिल ऐसा है जो कि हमारे सामने होता है मगर हमें नजर नहीं आ रहा होता, और मुस्तकबिल नजर भी नहीं आ सकता, वो सिर्फ अल्लाह ताला की जाते पाक के अलावा किसी को नजर नहीं आता। और अपने मुस्तकबिल के हवाले से हम जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें खड़ी कर रहे होते हैं ख्वाबों में और ख्यालों में, और उसके लिए तकदौ भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेहनत भी करते हैं, अपने मुस्तकबिल को संवारने की कोशिशों में भी लगे रहते हैं। तो मुस्तकबिल एक ऐसी चीज है जिसको इंसान देख नहीं पाता मगर होता उसके सामने ही है। और माजी के हाल के हवाले से कुछ कहना चाहूंगा कि माजी जो है, कुछ लोग अपने माजी को अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं, वो अपनी जिंदगी में बहुत नुकसान उठाते हैं। माजी को अपने साथ लेकर कभी नहीं चलें। जो गुजर गया सो गुजर गया, उसको अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो आप जिंदगी यानी कि मुस्तकबिल की जानिब जो गामजन होता है इंसान, तो उसकी जो अचीवमेंट है उसको हासिल करने के लिए जो आप मेहनत करते हैं, तो आप उसको अगर हाल को साथ रखा हुआ है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हाल को आप छोड़ नहीं रहे होते, हाल को कह रहा हूं, माजी को आप छोड़ नहीं रहे होते, माजी को साथ लेकर चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि माजी आपको नहीं छोड़ता, नहीं, ये गलत है। जो लोग ये कहते हैं जी कि माजी मुझे छोड़ता नहीं, माजी हमेशा उसको मेरे सामने ले आता है, ये गलत है। हम माजी को नहीं छोड़ते, माजी को पीछे छोड़ दीजिए। आपके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी था वो गुजर गया, और अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए आगे बढ़ते रहें। बस ये आज का जवाब भी है। तो अभी हम जाएंगे जनाब एक और ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे फरहीन को। तो फरहीन, ये ट्रैक आपके लिए।

वेलकम बैक ओ सनामा जुनैद जमशेद एंड आई होप के ट्रैक आप सबको भी पसंद आया होएगा। और जनाब आगे बढ़ते हैं और तानिया हसन जी के बड़ा जबरदस्त से मैसेज आए हैं और बात बड़ी माकूल सी की है उन्होंने कि माजी से हम बहुत कुछ सीखते हैं और उस सीख को ही लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुस्तकबिल जो है वो बेहतरी की जानिब बढ़ता है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा भी होता है, जाहिर है जिस ट्रैक पर चल रहे हैं तो नजर तो आ रहा होता है। बात आपकी 100% दुरुस्त है तानिया जी, मगर कुछ लोग, मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था, देखिए माजी की गलतियों से सीखना चाहिए ना, ना कि वो गलतियों को दोहराना चाहिए या साथ लेके जाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं खुसूसी तौर पर माजी की उन गलतियों के हवाले से बात कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर मोहब्बत में नाकामी हो गई, मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं जो कि मोहब्बत में धोखा खाने के बाद अपने आप को इतना ज्यादा, मतलब वो तन्हाई में चले जाते हैं कि नाकाम नाकाम के रहते हैं ना काज के रहते हैं, और फिर इसको वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदत भी बना लेते हैं। ऐसे माजी और कुछ तलख बातें, कुछ तलख हकीकतें जो कि आपके गिर्दो निवाह में सरजर्द होती हैं, चाहे वो रिश्तेदारों से रिलेटेड हों, चाहे वो आपके दोस्त अहबाब के से रिलेटेड हों, उनको लेकर जो है वो साथ नहीं चलना चाहिए। ये अच्छा हो गया कि आपके इस मैसेज से जो है वो इस बात को मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सका, लेकिन ऐसा जरूर है, हकीकत है कि माजी की गलतियां जो हैं वो इंसान को उसको पॉजिटिव वे में अगर आप साथ रख रहे हैं, माजी की यादों को या अपने माजी को पॉजिटिव वे में से मुराद ये है कि उन गलतियों को दोहराना नहीं है, उनसे कुछ सीखना है और आगे की जानिब बढ़ना है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको ही आप नेगेटिव वे में लेकर चलेंगे तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह 100% साबित होगा, आपकी तरक्की की राह में रुकावट भी बनेगा। तो ये तमाम बातें थी। खैर जी, दुबई से जो है हमारी प्यारी सी फरहीन जो है उनको बहुत पसंद आया ट्रैक और उन्होंने थैंक्स भी कहा, यू वेलकम। नदीम भाई आपको और समी भाई चाचू को और सबको सलाम। ये हमारी प्यारी सी बहन अनीसा कह रही हैं और कह रही है भाई मैं अभी शो सुन रही हूँ। अच्छा सो रही होंगी आप, चले कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और सुने हो मेरा भी एक दो दिन में प्रोग्राम है बारबेक्यू का छत पर, जो मैंने गो शॉपर्स में जमा किया है उसके थ्रू। सलीम इमन भाई, हम तो आपसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं और आप भी कर रहे होते हैं, हम सब जानते हैं। तो जनाब अब जो है वक्त बड़ी तेजी से फुर्र करके उड़ गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको शो पसंद आया होगा। अब आपसे इजाजत भी चाहनी है और आपको एक और बात बताऊं, क्यू शीट बड़ी जबरदस्ती बनाई हुई है मैंने और आप भी बाकी गाने भी जो आप सुनेंगे वो बड़े जबरदस्त से हैं। और अगर आप जाग रहे हों तो सुनते रहिए, सुनते सुनते सो जाइए, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात जो होगी एतवार वाले दिन होगी जनाब, कल हमारी छुट्टी है और एतवार वाले दिन दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हम आपके साथ होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते अगर मेरी कोई बात किसी को भी बुरी लगी हो, किसी की दिल आजारी हुई हो, तो एडवांस में माजरत चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक बहुत जबरदस्त ट्रैक है जनाब, ये हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ ने डेडिकेशन के लिए इस गाने की फरमाइश की थी, जो कि हमारी क्यू शीट में मौजूद था और कहा था संजू को डेडिकेट कीजिएगा। तो ये हम ट्रैक नौरीन तौसीफ की जानिब से संजू को डेडिकेट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।